0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो
2: अपटंग म्यूजिक एम्पायर चेंटे मोर

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Soldiers, AK, Okangboy in town, alongside Mr. Diggity.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Yeah, yeah, yeah, just land secret.

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: Dr. Azy sings it.